सतगुरु साहब भंडार नाम जिस एहो रतन तिसे ते पायना जा की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायना पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायना गुर के शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाए

सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिशन महेशा, सिमरै देवते कोड़ तेतीसा, सिमरै जक्ष दैत सब सिमरै, अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पश पंखी सब पूता, सिमरै बन पर्वत अवधूता, लता बलि साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन का

परम रुना गुरु का शब्द वसे मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथा स्वामी।

निवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पे खारी जन बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर

भी पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार।

मंगन ने किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों सेवक।

मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी रिखी केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे।

अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी। केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा। निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज कहाया।

शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुखपणी, सारंग तार भगवान बीठला, मैं गणत न आवे सरबंगा, नेह कंटक नेह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पया

तुदलेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत

सास सास प्रभु विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते। तू समरथ वडाल का मारू महला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित आरी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

दिल नहीं बदले कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने।

ला विण गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहे समाए मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ नानक पूरा तोल है कबू ना होवे काट महला चौथा नाम विहूणे परम सह आवे जावे नीत इक बांदे इक टीलिया इक सुखिए हर प्रीत नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कढ़े विडार नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना दूजे ना तरे प्यार महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान नानक नदरी पाई है दरगे चले मान पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बन आई एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए नानक मन तृप्तासी है सिफती साचे नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा अज्ञानी अंध न बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चक

जे सतगुरु माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विछुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुरु शब्दी कमल विकास।

पूरे परदाना, हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना, ज्ञानिया का यो महत है मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या लेओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोई, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

नानक जे इव मारिये गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे, थिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हथ ना आवई जमका डंड लागे, तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदै लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ, कालर लादस सर लागणो

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नवनिद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा। इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए, मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे न होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा।

सब कोए। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोहे जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

क्या मारना, जे आप मारे गोविंद मैला तीजा। मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार, सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर

देख कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल।

न लगै त्रिण जिस होवै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण तू होर तू पाए न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण दखणे महला पंजवां जे तू वत्तै अंगणे हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात न पुछै को।

के सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वै

जिस मेलै सतगुरु आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा तृण छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दोवै की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

छोड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरताया।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृपतावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

कौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म तीरा कर अंदरे यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना।

जान चंद्र पा नगरी सुख घटाओ डोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुत न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवार आया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिरे निकामी मन रत्ता कुटम स्यों नित गर्भ फिरामी फिरे गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिरे संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हे कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा मतड़ी

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाए का सब भी उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कथे विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो दुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करें पुत्र कलत्र सने नानक

डूंगर जला थला भूम बना फल चंद्रा पाता लाया काश पूरन हब घटा नानक पेठ जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब पर लै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह।

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम है रम छूटो, नाहे तब बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीते आ, जाते बिखिया ते हो।

राम उदग दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

उदक समुद्र सरल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ध्यावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने

तारण करण तवे लग चाहिए जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल पय घटी मैं कह सभी मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकड़े

पै अनुभव होए बना हम बै सौ अदूर देख ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए बना हम बै।

हर मुकत चारे सिद मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भविकन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं, धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय दे धर्यो। नामा कह भगत बस के सब, अज हूँ बल के द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बिसार्यो रे दीवाने, दीन बिसार्यो रे। पेट भर्यो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हार्यो रहा। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो उठ।

आज काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बस।

देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन कर। कैरव दास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सर। मारु सुख सागर सुर तर चिंता मन काम देन बस जा रे। चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै। हर हर हर न जपस रसना, अबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बिद चौतीस अक्षर माहे। व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म।

न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सा सोहा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवै बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरै क्यों घड़ी बिसारी हों बलहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक वरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे।

सुख मैली, नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तप है, धरती दुख सह सुख है अगन पक है। अगन रस सुख है मरिए सुख है, भी सो किरत नहारे। रस फिर छाया धन का।

सावन सर्प मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेब इकेली खरी दुहेली मरण पया दुख।

जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसै निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रब तै ही जाइए। असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, ता मिली है प्रभ मेले दूजे पाए खुई। झूठ विभूति ता फिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले। दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा। कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया। दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मां है सरसी, अवगुण मारी मर न सीजै गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खत्म।

चल जगत समाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने कव पाने का पाया। गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति ते आगे। ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख, आवत की नाही मंतन वसे मुखे। मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडर जीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी। दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके, सुर पावा सरनावा। गंग जमुन तय बेनी संगम सात समुन्द समावा। पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस बया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ। बहुते वेत करे फिर बाजो मैली दान खाओ। हार डोर रस पाठ पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी। वेद समार उत्ती छिट्टी वार भले, घड़ी मुर्द पर साचे आए सहज मिले। प्रभु मिले प्यारे कारज सारे, करता सब विद जाने। जिन सिंगारी तिसे प्यारी मेल भया रंग माने। घर से जिसुआवी जा फिर रावी, गुरमुख मस्तक पागो। नानक वह निसरावे प्रीतम हर वर फिर सुहागो। सुखारी महला पहला, पहला पैर नैन सला।

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मग न जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

माया सुधारा जगत प्यारा चोग चुगा नित खासै नाम जी आवै ता सुख पावै गुरमत काल न ग्रासै जमन मरण काल

वैच वै सवाया अपरंपर आपे थापो थापे तिस भाव सो हो वै नानक ही राही रह बेदया गुण कह हार करो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर वर्ण दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समाने आराम बहु साधु लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्दा।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, किस दिन रह न जाए।

हर हर नाम सब सारिया, गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हौ सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा, हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर हुए विगास, प्रयो प्रयो सत नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन, हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पल जल तारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए। मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुग्ध किस मित नहीं पाई। तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले। हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे। हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभु मोया। क्यों सास गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया। गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश टेक दियो, जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा। बिखम पौ तिन तरिया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी, हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा, तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम, गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा, तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर, हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से, जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया, करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे। हो तिवे चला हमरे हाथ किस नाहे, जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी, सब तिन का लेखा छुटक गया। तिन की गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे। हो तिवे चला सुखारी महला चौथा। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे, जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर, सब ऊपर साच धनी। जिन जपिया

हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद कविया तू थान सनंतर हर एको एक रविया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत प्रगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किछ पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सब ही सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थिओ गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करें ता पीवा आस प्यासी पिरके ताई

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिवलाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कई है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मती जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखे रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ठ साधु से, गोष्ठ हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन। हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी।

दर्शन पेखत मन लपटानी, देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी, खिलारा महला पंजवा, कर की जा एको अंकार। सतगुरु प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल रहाओ, अनेक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान तरो, उपाव सगल कर हारियो, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा, कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हर दान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो, चरण कमल संग त्यान, केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपाले सगल संभाले, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरख विधाते, कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

भूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवो पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गए लेहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपक बिख्या रस भोगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद्ध में खोर परम पीत निवार ठाकुर गहलो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारो नहीं दिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुख मली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निध गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरण आई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सह, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कहे बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरने संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे, राग के दारा।

दादौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री तलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

आओ राम ना जपो कवन प्रम फूले तुम ते काल ना दूरे अनित जतन कर एहो तन राखो रहे अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे क्या तो करे परानी जा तिस पावे सतगुरु पेटे एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

पाओ भगत च्यों काज न कछुए मेरो काम दीवान। राम विसार्यो है अभिमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान। राव लाल से झूठ बिकार महामद ए बिद औद बिहान। कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए। मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस इकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए। कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार। सतगुर प्रसाद खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे। चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कह देख। किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौपदे

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस दियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना साथ शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन बिद तरकू तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब होना जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पति ने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरो महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ से किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभो न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावस मुक्त नाम गुरमुख लहै

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीर्थ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पसम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा। पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

साचा फल पाई। रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। रहाओ एहो अकार तेरा है तारा, खिन में बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

तिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पणत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुरु कृपा करे, इह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारन हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में लाती जा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जलें अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा।

जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों मैला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चित लाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा। गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उधारा, जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने, जो कुछ कहे सो पला कर माने।

आद परम पद पाया। सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए। गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए। सतगुरु जिनी न सेवया, दाता से अंत गए पछताए। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए। पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए। डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ। देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार। गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार। जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई। पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया। दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी। बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए। सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लहे जन कोए। हर हर नाम हृदय सद वस्या, पाया गुणी निधान। गुर प्रसादी पूरा पाया, चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए। आपे गुरमुख देव आए, नानक नाम समाए। पैरों महला तीजा, मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला। दूजे पाए फाके जमजाला, सतगुरु करे मेरी प्रतपाला। हर सुखदाता मेरे नाला, गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे। सासना के बालक गम न करे रहाओ, माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे। पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। खिन में पयान रूप निक्षया थम उपार। हरनाकस नखी विदारिया, प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई। तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री, तर्पण किछु न जाने। शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन पगत करे दिन राती। दुबदा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते। सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूर।

संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कोटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी।

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिए सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझ तो बाहर कोई ना है, हर सुखदाता मेरे मन जाप।

कहो कबीर इहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पचाना। कहरो महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंगयाने, पांच मिर्ग बेदे शिव की बाने। संत संग ले चढ़ो शिकार, मिर्ग पकड़े।

आओ तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिन सी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागति आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे हाथ जम मार कै संगी पांथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवे पीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहु किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना खत्म।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप समायन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मेला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता।

बिन गुर पावजल फेरा होम जग जप तप सब संगम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाए गुरमुख नानक जगत कराया पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तार पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए।

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंक निकट डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु।

दर्भ हिरे मिथ्या कर खाए पई ठगोरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड अंतर

तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहा समाये, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

वासन रोग पवर विनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटह न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता

पूरन सव्यासा मिटे अंधेर पय परदासा अनहद शब्द अचरज विस्माद गुर पूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट पय गोपाल ताके दर्शन सदा निहाल सर्व गुणा ताके बहुत निधान जाको सतगुरु दियो नाम जाको पेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभु पाए ताकी रेन बिरला को पाए हरो महला पंजवा सुतवत पाप नालक आवे बेसुआ भजत किसने शरमावे सारो दिन मजूरी करे हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर माया लग पूलो संसार आप पुलाया पुलावन हारे राच रहा बिरथा व्यवहार राओ एक माया

पूरन होत ना कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु।

दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किलवित जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ने सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, तेरो मेला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला।

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुरु कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम धान पैरो महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके कर्तव्य लखे न जाए, जाका परवासा सब कट माए,

फिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्त करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखला का

पहला पंजवा नाम हमारे वेद अरनाद नाम हमारे पूरे काज नाम हमारे पूजा देव नाम हमारे गुरु।

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण तास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे दुख न आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए।

नानक को गुरु कहे दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस प्रभु

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

मन पानी जल थल मही जल नव्या सोए नानक सब किछ प्रभु ते होए पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत पग...

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन ना लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभ कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरो महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

गायण आद जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरो महला पंजवा पै को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वडपागी नानक तिन कै सद कुर्बान पैरो मैला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ पाखे।

ना सुच हर मान है, अंतर मैला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न काले।

मुखते बोलिया ता कड़िया विचार अंतर जामी करता सोए हर जन करे सुने चल होए हर का दास साचा दरबार।

पंजवा सतगुर अपनी सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका अमर नामे तै कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिस

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार,

कृष्ण बुझाई। हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई। हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन, जन मांगे गुरु।

सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन

कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय समाए।

तरतत्यान कोट तपी सर तप ही करते, कोट मुनि सर मौन में रहते, अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी हथ हर हर।

राम राजा नौनिद मेरे संपैहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज में बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आप

कह कबीर जिस उदर तिस्माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

आहे। क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न

तो मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

राव। हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरना कहत नाम दियो इहो विचार इन विद संतो उतरो पार संडा मर कह जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पछारे राम कह कर ताल बजावे चटिया सब बिगारे राम नामा जप वो करे

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण ले सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

फैला। सगल पवन तेरी माया मोह, मैं अवर नदी सह सर्व तो हो। तू सुरनाथा देवा देव, हर नाम मिले गुरु चरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग। बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध।

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहूं पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

न छाया माने तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन सोला खिन मासा बसंत हिंडोल मैला पहला साचा साहो गुरु सुखदाता हर मेले सुख गवाए कर कृपा हर भगत दृढ़ाए हम दिन हर गुण गाए मत पूले रे मन चेत हरी बिन गुरमुखत नाही त्रैलोई गुरमुख पाये नाम हरी रहाओ बिन भक्ति नहीं सतगुर पाये बिन पागा नहीं भगत हरी बिन पागा सत्संग न पाये कर्म मिले हर नाम हरी कट कट गुप्त उपाय वेखे प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करे सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिन को तख्त

जीवत मरे, हम दिन साच नाम उचरे, इन विद प्राणी दुत्तर तरे, बिख अमृत करतार उपाए, संसार बिरख को दोय फल लाए।

भैया। राते साथ हर नाम निहाला, दया करो प्रभु दीन दयाला। तिस बिन अवर नहीं मैं कोए, ज्यों पावे त्यों राखे सोए। गुरु गोपाल मेरे मन पाए, रह ना सकूं दर्शन देखे।

तारे गुर राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चै पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक होवे खै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसै।

आपे सतगुरु मेल मिलाए, जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सह सुभाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा। भगत वचल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सह सुभाए, भगत करे विचों आप होए, तभी साथ मिलावा होए, भगत सोए सदा हर प्रभु द्वार, गुर कहे साचे प्रेम प्यार रहाओ। भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर सबदी विच्चों हों मैं खोए, हर जियो आप वसे मन आए, सदा शांत सुख सह समाए, साच रते तिर

चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर, छावकणी फूली बन राय, गुरमुख बिगसै सहज सुभाए, अनदिन कीर्तन करै दिन रात, सतगुर गवाई विचों झूठ परात, परपंच वेख रहा।

गुरु चै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु के शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता से जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

बहु पेख करे मन शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवट पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर में आणिया, कर में वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ। इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख वखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर पे तै मत बुद होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ। मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन

पूरे पाग हर भगत कराए। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ। यो मन तंदे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए। यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए। बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए। इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती। गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए। ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा आपे लाए। मूल लगे ता सतगुर पाए, आप बसंत जगत सब वाड़ी। नानक पूरे पाग।

तूर्तिना की अकुलीय पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया। गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए। काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे। जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी। गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा। कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले त खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देव मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे। पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उभरिया, तखंड परम उपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे, बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे है, दिल कर नहीं वाता पाई है, बुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है, गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाई है रहाओ, कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह न सकाई है, ज्यो ओ डाकूप गोज खिन काडे, ज्यो सतगुर वस्त लहाई है, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीव आये, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाये, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाये, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाये, बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकरे काल सुलुंज, गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस कुंज, राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज, हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तार ओरे।

मम आधा ना हर रसे स्वाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान। बसंत महला पंजवा। तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण इक गुण ना जान। हाँ कछु न जानो तेरी सार,

तरों टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

सुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आराधे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जत नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुरु चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत पद कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुखतनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

आंख सहज गृह सब बसंत, गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप, जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुर अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ। नानक भगता पली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत, बसंत महला पंजवा, हुकम कर कीने निहाल, अपने सेवक को पया दया।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इत रहे सूख।

दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए, इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोजी को, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती कर जाते, हर आते खेले आते देखे, हर आते रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

धाना कहो नानक कह तया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मैला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभु।

क्या जानो, या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो, संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तक निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो, जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम विसार।

प्रेम आधार, गुर शब्दी बिक प्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तो है, नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नै अस्थिर दिसे एक

दुख से न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था

ऐसे हर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप पछाण रहे लिवलागा जन्म जीत गुरु।

गया पै कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूले।

है गुण नानक बोले पली बाण तुम हो सुजा खेल हो पछाण बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार मन मुख पर मैं मजगुबार मन अंधला अंधली मत लागे गुर करनी बिन परम ना पागे रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई पशु भय अभिमान ना जाए लख चौरासी जंत उपाय मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए सगली पूले नहीं शब्द अचार सो समझे जिस गुर करतार गुर के चाकर ठाकुर भाणे बख्श लिए नाही जमकाने जिनके हृदय एको भाया आपे मेले परम चुकाया बे मोहताज बे अंक अपारा सच पति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी पौरा

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई।

दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सो साखी।

गनका उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उधार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

राजा तब मंगनहार। दुख सुख बादो संसार मन उदरण का साजना है। पाप बंधन नित पौत जाहे ईट मीत को सखाना है।

तू करता तू करणहार, तू ऊंचा तू बहु अपार, कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरण आए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ। दिन रहे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अपूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पद राम नाम।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव सह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जैस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल का

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

जैसे पंकज त्रुट टुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस्ते

कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभिमान ना

अंतर रतन पदार्थ हित को दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर। मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले सांत पाये। दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर

मन मुख प्रम दूजे पाए लाजे अंतर अज्ञान गुमारे सतगुर दाता नजर ना आवे ना उरवार ना पारे सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल धारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उमारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो सत्कर्मा।

सांस वसै मन आए, गुर कृपाल पै तव पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरे ही रे सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

तिल तिल पल पल औद फुल घाटे, बूझ न सके गवार, सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार, संत जना कैसा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गाओ।

वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर।

तट तीर्थ पर भवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा खाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

आन उपाव न को सूजे हरदा सा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा सार महला पंजवा माई तीर रही प्रे बहुत विरागियो अनक पांच अनूप रंगरे तिन स्यों रुचे न लागियो रहाओ निस्बासुर प्रे प्रे मुख तेरो नींद पलक नहीं जागियो हार कजर बस्तर अनक सिगार रे बिन फिर सबे दिख लागियो।

विनाशी इक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पाकरे।

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते ते पहे तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बाँचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए। देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम, हर छोड़ न

आवत जारे, कालर कोट उठावे मुंडे, अमृत मन से डारे, ओढ़े बस्तर काजर में परिया, बहुर बहुर सिर चारे, काटे पेज डारे।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया रहाओ। परविरत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा

कहो नानक किस पयो पर आपत, जा कै लेख मथामा सारंग महला पंजवा, अंदिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध, मन बांचत फल लिये रहाओ, आवो संत प्राण सुख दाते, सिमरन प्रभु अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन, पूर रहो खटवासी, गावत सुनत सुनावत सरदा, हर रस पीवड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते, राम नाम लिव जागे, काम क्रोध झूठ तज निंदा, हर सिमरन बंधन

पारगम त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे नाम।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संतें चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई राव।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, कहो कृपा।

मन कहां लुभाई है आन कहो, किंत ऊत प्रभ सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग शोक तेरे मिटे, सगल अग निमख ही है हर नाम दियाए रहाओ, सोर स्यान को बहु चतुराई, साधु शरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे कर्म राय, एक कस दिन नाही को दूजा, आन न बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारंग महला पंजवा, हर जन सगल उधारे संग के, पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिनसो गोष्ठ से तरे, बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिनकी तूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे, सारंग महला पंजवा, हर जन राम राम राम से आए, एक पलक सुख साथ समागम, कोट बैकुंठ पाए।

मोहन कायावो करो जो दरिया, मान करो अभिमाने बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पै सुखदाई अंगले मानक देखा रहा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी।

आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचाते संग टूटा दर्शन देख।

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला गुर बाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगै अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख उपाय।

गुरमिल ऐसे प्रभु के आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमक न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हों बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

और द्वितीय आकाश बिराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे मेरे माथे। सो नानक मैं

जैसे मात पिताए किस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

की जय। सुखदाता प्रभु ध्यान यह रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर।

जीवन पाया बिनती नानक हिसार है सारंग महला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु उधायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए पूरन।

अपनी इतनी कछु न सारी, अनेक काज अनेक तावरता, पुरजियो आन जंजारी रहाओ, ज्योस चार के दिशे संगी, उहा नाही जह भारी, तिन्स्यों राच मात हित लायो।

जन का संग पाए वड भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो

गुरु के बचन जप्यो नाउ नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुरु उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे।

सत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया।

समाये अनद अनद गुण गाया। बां पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप से माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सियों लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कच करनी यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

तै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस की तन हर गाय है।

सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल से मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एक बिन किछ होर न जाने, और उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ।

जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त

समान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत सत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहार।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कथा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिए हर तेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या देखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जा के रास सर्व सुख स्वामी, आन ना मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिरस जाए अभिमान। सारंग महला पंजवा, तुरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर, हर

कोई चतुर्सियाना पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पे मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्योमीना जल स्यों उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चात्र।

मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावत गी दे, होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख कोरी।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

पूरन होत न कथो बातें हंस प्रतिहार रहाओ सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार चरण कमल सर।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

ना प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतेओ बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

जानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हू राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

नानक शरण कृपा निज सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर ना

कोट कल्प के दुख विनाशन सात दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी अवरत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

मनुआ डोले अकथ ना कथे कहानी गुरमत ने चल हर मन वस्या अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सह सुवाई सतगुरु मिल रही है।

रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मेल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकल।

काट काट कथा राजन की चाले, कर कर तुझे उमाहा, जी जंत सब पाछे करया, प्रथमे रिजिक समाहा, जो किछ करना

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जाका विस्तार, सो बाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने न जाहे, सो घरक दोहू में नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तो करें, अनक महेश बैस त्यां करें।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

पूरन मनमोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब छाई क्यों ना अरादो मिलकर साधो करी मोतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किछ दीसै संग ना कछु जाई कहो नानक हर हर आरा।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

कह करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिये परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

को नाम आधार है, नामे सुकोई नानक मंथन रव रहा, गुरमुख हर सोई श्लोक महला पहला, नानक तुल्य तोल जे जियो पिछे पाये, इकस ना पुजे।

मूरख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्द उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख न जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए नाम उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ति आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समाणी नानक निगुरिया।

पौड़ी। नाय मने दुर्मत गई, मत प्रगति आया, नाव मने हो मैं गई, सब रोग गवाया। नाय मने नाम उपजे, सहजे सुख पाया, नाय मने सांत उपजे, हर मन वसाया। नानक नाम रतन है।

मैं अंधे नाउ सुजाता। जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई, नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई महला।

आपे सत्ता आपे सुरता शक्ति जगत परो है आपे पेजे आपे सदे रचना रच रच वेख है नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवे तुर लेख।

रूप इतना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इतना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे दिन गुण गर्भ कर।

वस्त पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गनाए, नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम, सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विछड़े कबहू, जे आप मेले करतारे, अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा।

वही नाम वसे मन आए, बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपके ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

पांचवा हर गुरमुख नाम दियाए, दुख पुख काणा सब चुकाए सी, न्यू उठा छे बरलाए, सब तरत पाई हरियावली, अन जमिया बोल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर तिसे त्यावो संत जनों, जो अंते ले चलाए, हर कीर्त पगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख सुख ले जाए, जन नानक तृप्त है गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुरपुरे की दात नित देवे चढ़े सवाई।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहा गण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागन अस्थिर वर सोहा गहरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभु अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिशता कीत पे उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

एम सुबाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाई है।

सुरता पंडित का कहनाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंधीठा कुछ कह न जाए क्या कर आँख बखानिए माए रहाओ ऊपर बल समान पे आए।

मानस का फल तब मैं सासे सास दे काया फल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

बुदबुदा कैसा यो संसारा जिसते हो आतिश समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बक्से तिस बिघन ना कोई रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए सतगुरु तोते मन मर रहे हर नाम वसे मन

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गिरना बूझे, जिसनों

ले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बक्षे पलत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए मलार महला की जाए गुर सावाही सदा सुखदा।

एक को एक वसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बूझे।

सबद सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ नावे हम दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द।

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय गुर प्रसादी बूजो भाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अन दिन एको नाम।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गए, गुर शब्दी अस्थिर कर गए, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत।

ना जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम हीन दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन पागा नाम न पाया जाए, बहु विरथा का कर्म कमाए, त्रैगुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या।

हरी। सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी। नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिस्ते कुल लागी गारी। हर तिस्ते कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर मैं तारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस

गुरपुरै हौ मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किलविख मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार थाप्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई, मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे तिसकी भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे, गुर के बचने करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ, किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे, हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे, हर जन को हर भूख लगा।

कोई देखवाले ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, ओए आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुबदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा, गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारिक भूख कैसी, नव निध नाम निधान गृह तेरे, मन बाचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मनार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निर पाए, जब त्रय आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे अनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का सी हरते। हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहुजोनी, एक न काहू तरते रहा।

मैं जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

पिता कृपाल पै बड़ पागी मां सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बेनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को तेते संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतू धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितै उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सदा हजूरे नानक रव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ग्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जक किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे

सात दिन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मल्हार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म पसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

न जाए, कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम

ज्ञान सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगे पाये मान ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाओ। सत गुर जेवड़।

गुरमन आर प्रिय दे आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे

नानक प्रयो प्रीतम किया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ सुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल दिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तोहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आ गया हो है आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तोहो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चकवी

प्रीतम प्रीत बनी समय ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई चात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल करे बिल लाई कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

दक्षिण ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

जुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार।

कबूर जाए जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए हुक्मे बांदा कार कमाए एक शब्द राचे सत समाए चौ दिस हुक्म वर्ते प्रभु तेरा चौ दिस नाम पतालंग सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा कर्म मिले बयालंग जामन मरना दी से सिर उबो खुदया निद्रा कालंग नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालंग मलार महला पहला मरण मुकत गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ पाथी जाल।

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे पाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

तिस जेवड अवर न कोए आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

हर सिउं रहा समाए, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुरु की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

भगत ना होए। ज्ञान मती कमल परदास चित कट ना मैं नाम निवास। हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए। कह कह कहन आप जनाए, बिरसी भगत सब जन्म गवाए। से भगत सतगुरु मन भाए, हम दिन नाम रहे लिवलाए।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द

गुरु नानक का सब सुख साचो नाम पौड़ी। आपी ने आप साज आप पछाणिया, अंबर तरत विछोड़ चंगो आताणिया, गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज विलाणिया, तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया, तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया, सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला। नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन।

लोड लहो जित वन्ये रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया है सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथु पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया आप पेड़ मारे आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखे सिरलेख विन कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए। श्लोक महला तीजा ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन पंग पौड़ी दोवे तरफा उपाए इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरं फिरे रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल सब सवारिया।

सब करण पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरे भी है जिस तर्क न लागे वार। आडाने आकाश

गुरमुख पद सों लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

जो हर चरणी रहे लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

सच्चा साहिब मन वसे सा मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

आचार्य गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हौ बलिहारी गुरु अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटिए मन मुख बूझ न पाए। विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किसना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चले चवक गलवन। महला तीजा, बाबी हा जल में तेरा वास है, जल ही मैं फिरा है, जल की सार न जान ही ता तू कूकन पाहे। जल फल चहो दिस वर्षदा खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के ना है। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाया गुरमुख नाम पिया।

सब में एक वर्तदा। सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे दे मनहार। श्लोक महला तीजा, बाबी हाँ इहो जगत है, मत को परम पुलाए, इहो बाबी हाँ पशु है, इसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मनहार शीतल राग है, हर त्याय सांत होए, हर जियो अपनी

गुरु प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवानी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असा

संत भाया दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, बिन नामे बाजारिया पिहावल होई, कूड़ खुट्टे नानका सच करे सोई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अब गणियार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभु पाया सत्य दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समालिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जमताल सच्चा रखवालिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वर्त सच सच्चे सबर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बादी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सो साल आई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाले परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए, नजर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे वही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही। एक अगन जला में अंग आप विगो वही, गिनना में तन चार क्या कह रो वही। सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघे नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हो तिन के बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाई है नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीर्थ नाया। हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया। बिन शब्द आचार

जान मनुआ नाया शब्द मरे मन मार तन जने दी माया दर सच्चे सच्चार सच्चा आया पूछ ना सके कोई जाखस ने भाया नानक सच सला है लिखिया पाया श्लोक महला पहला कुल्हा देन दे बावले लेन दे वडे निलज चूहा थड ना मावई तिकल बन्ने छज देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे।

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता दिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शर्म करम दोए नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे।

जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा चै सिकदारा एना पर्याना।

पौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुरु ते पौ उपजे

अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर उत्या नानक सच्चे मेल सच्चे रत्या।

मासो ही मास उपजै, मासो सबो साथ, सतगुरु मिले हुक्म बुझिए, ताको आवे रास, आप छुटे न छूटिए, नानक बचन विनाश, महला पहला, मास मास पर मूर्ख चगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने, गेंदा मार होम जग किए, देवतियां की बाने, मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मांस खाने, फर कर लोकानो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधेश्यों क्या कही है, कहे ना कहे बूझे, अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने, मच्छी मांस न खाही।

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई न रखसी जर जरवाना कन चरिया नथसी सतगुर बोत बेर सच्चा रखसी अगन पखे प्रहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

सुखमन कै कर राग सुन सुन मंडल लिख लाए अकत कथा विचारिय मनसा मन समाए उलट कमल अमृत भरिया इव मन कथो न जा।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध राग मलार बाणी।

और कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा चैदांगिया द्वारे चित्र गुप्त लेखिया कर्म राय

रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंद। तर तार अपवित्र तरमानिय रे जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तेह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा। अब बिक्र प्रधान ते करें।

कहो रविदास पयो जग देखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महल

करी जगदीश्वर ते सब ऊंच हम नीच विख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभपात कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम जप

रंग हर के रे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिखिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतारियो हर रस रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना में

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम बो

चै राम रविया कट अंतर। अस्थिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ।

गुण गावे। गुरमत हो बल बले हो बल बले, जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी की चै लख बीस। जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस राव। हर कृपा कर स्वामी हम लाए, हर सेवा हर जप जपे, हर जप जपे जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को, हो कुमकुमे कुमकुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज रामो मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम। सब संगत मिल पज राम, बड हो पाग मताम। रहाओ जित गृह मंदर, हर होत जास तित तर। अनदो अनद पज राम, राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम। उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे हरे। तज राम राम राम, सब शिष्ट तार हर तुम।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म किरिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई हर ब्रह्म जोग हर पाई सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यों छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निदान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कहो नानक ता कह बल जाओ, कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, कहो नानक कहो छू।

अनिक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जस सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोह त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कप

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई।

ऊंच नीच सब एक समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर, पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो, मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो, कहु नानक एक कै

परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाध समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीरे।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाया।

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरनी लाग। हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ। अनेक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावा।

जगत उदाहरण नाम पै तेरे, नव निद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरतेरे, सो पावे जिस लिखत लिलेरे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करेरे, असत मज्जन मैल कटेरे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे।

बरना साकू एक तुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

यो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करे तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन।

पतित पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद शरण आस पूरन दुख विनाशन गही ओट नानक।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंताप राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

अनमोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रब मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए बुन निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई। कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

ज्यों ज्यों जपै तिवें सुख पावे, सतगुर सेव समावे गो रहाओ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, बिख दुख कर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

आवो मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्त लग शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

ना गए, हर जपत्यां अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के, हर जप्यो कौ

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुरु,

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

मिल साधु नित पजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन। गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सत संग पाये, हर त्याये बहुर दुख ना लागे। कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन को।

जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमान।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

आपे आप वर्तदा तू आपे करे सो गया। सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलो गया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय। हौ मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए। हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवरना कोए। जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए। कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए। पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना। सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना। सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग

चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सबदी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या

हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए, जिनको पूरब लिखिया तिन मन वसियाए, सतगुर के पाणे जो चले तिन दालद दुख

रंग परंग सिस सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावनी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुरु

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देओ प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर मेल

वडे वड ऊचे सब ऊपर वडे वडाउना जो त्यावे हर अपरंपर हर हर हर त्याए हरे ते होना जो गावे सुने तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते परतक सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरु मंत्र हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे कट कट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाईदा सब सिस्त उपाई जी जंत हर देवो दान दयाल प्रभ हर मांगे हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आशा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वक्त है निकट सब जौला सो बुझे जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन नानक।

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सत गुरु गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सत गुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनिए किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सत गुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांस वती मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया। जिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत ने सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम।

हर स्वामी हर प्रभु तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा, हर प्रभु सज्जन लोड़ लो, पाग वसै वड पाग, गुरपुरे देखा लिया, नानक हर लिव लाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विटों नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाय सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बजाए मिल सतगुर।

कोई काट काट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राम।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राति। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग ससिया हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद सुद मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

जगदीशर चरण शरण जो आए, तेजन पवनित पार परे, भगत जना की तेज हर रास है, जन नानक आप हर

0: मांगन मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये। कल्याण महला पंजवा
1: मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहा ब्रह्म महेश।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाये, साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो

ਜੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਊਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਨ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਲ

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

जन हर भगवान दिखी जय साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तांग तनी जय संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूज करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या शिव शीतल शब्द गुर दी जय तन मन शांत होए अधिकारी रोग काटे सुख सवी जय ज्यो सूरज किरण रविया सर्व ठाई सब कट कट राम रवि जय साधु साध मिले रस पावे तप निज कर बैठिया पी जय जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यो चकवी देख सुरी जय निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख काढ़े अमृत पी जय साकत स्वान कहिए बोलो भी बहु दुर्मत मैल भरी जाए आपन स्वाय करें बहु बाता तिना का विसाह क्या की जाए साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस्पाड कदी जाए पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जाए तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जाए सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जाए कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जाए जब लग सांस होए मन अंतर साधु तूर तवी जय रहाओ शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय पवन पवन पवित्र हो है सब जय साधु चरण धरी जय ज लाज अंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जाए कर्म राय की कान चुकावे दिख दुबदा कार्ड कटी जाए परम सुखे बहु उबसुक कही है मिल साधु संग हरी जाए कांते बिलम

जाए जेवर भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए सब माया मोह बिकम जगतरिये सहजे हर रस पी जाए माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जाए अज्ञान अंधेर महापंच बिखड़ा अहंकार पार लग ली जाए नानक राम रम रम रम रम रामे ते गप की जाए सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जाए छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे करना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए नारी बेरी कर बरदेश मन किया खुशिया की चैवेश जा सदे ता टिल ना पाए नानक कूड़ कूड़ हो जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोए यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करनहार अपार रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल की मत तापवे जा सिरे होवे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित तन नाम ना उपजे से तन होए कुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई दुश्मन दुख ना आवे नेड़े।

ऐसा ते तस्कर जो नाम ना ले वासे कोट पंचासा जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे एते गुण एसिया चंगियाईया देना पछोतावे तुद सनान तिन तन पले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई करवाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला जा के बर्त नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई जा के आस नाही निराश नाही चित

अकथ पर जाए, कथनी बदनी नानक जल जाए, प्रभाती महला पहला, अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन, अष्टक तीरथ संग गहे, गुरु उपदेश जवाहर मानक, सेवे सिख सो खोज लह, गुरु समान तीरथ नहीं कोए, सर संतोष।

पूरा नावण पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जासी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो पै पै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गौ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने।

इहो रहा निर्वाण जिते होआ सोई कर मान्या नानक गिर ही उदासी सो करवाण प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आवन।

ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाते सब त्याई है छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस पर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो गए रास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणिए कहो न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मेले।

जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाए। प्रभाती महला पहला, जागत बिगसे मूठो अंधा, गलफाही सिर मारे तंदा, आशा आवे मनसा जाए, पुरजी ताणी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहा, कहो न बूझे अंग न सूझे, ओंडी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर,

और न पावे जब लग दूजी राई एन सजिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के शब्दे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नजर करे सोई बिद जाने मैं मैलो उजल सच कोए उत्तम आख न ऊंचा होए मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार पुस्तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार तू बक्से जात पत होए नानक कह कहा वै सोए अरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबलो चाग सहज परगासिया रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम गरबा दे मारिए छूट सा चैनाए जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए जग खो तो सच निर्मलो गुरु शब्दी विचार ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार अजर जड़े नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई रह सुरंग सुरमाइस पाई पैन खाना चीत न पाई साथ सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत कर्म कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम उर्धारी दीना नाथ पियो बनवारी हम दिन नाम दान व्रतकारी त्रिपुत तरंग तत विचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए प्रभाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रंगन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुरु प्रसाद प्रभ पाया अतिरस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रब रहा प्रभ सोई
प्रवासी महला पहला। बारह में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी, जोगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछे आ जाची।

मन मुख विच्छेद दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर कीरत कर तारी, कहां करे बपुरा जन डरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहा वे, गुरमुख से समावे, सो गिरही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया, राग करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाई, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहा, हम दिन पवित्र करो दिन राती, इस युग का लोहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सत नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट न आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत न पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाए पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड़ अवर न दाता, पूरे गुरते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पायन,

गुण गाए रहाओ। अमृत नाम को जन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एव आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा, सोई तगत सुगड़ सो जाना, नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा विकास इकोंकार। सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर भायो, गुरु मंत्र दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान, कित विद क्यों पाये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर बान। सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरु मुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभु हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुरु मीठा, गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी, मोय फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभु हृदय न वस्यो, रिन बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुद पाई, हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत बहु कहे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक, मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक।

तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस टीक जिन हर हृदय नाम नौस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुक नाम बिना नकटे नकीक कट कट गुनैया रमत राम राए सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदल हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा प्रभाती मैला चौथा गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर्धांबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिख्या नित लोग लुवाने उत्कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ न जान सुन मन गुरुमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सहजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परंगते हर कुसोगते रहे निरारा
पातू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ कोग रस अनेक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर से वो नीता नीत, कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे, किर्त संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार, करवाती महला तन्यवा, प्रभु की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभु दर्श प्यार, तुमरी पगत प्रभु तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छिड़ाई रहाओ, जो जन राता प्रभु के रंग, तिन सुख पाया प्रभु के संग, जिस रस आया सोई जाने, देख देख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभु सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभु के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, करवाती महला पंजवा, गुंगावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी

सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया फलत पलत जिन गुरे सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया महामुक्ते किया ज्ञानी गुरपूरे की अकट तवानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वडे पाग पाये हर सेव प्रभाती महला पंजवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुख मिटाया हम बारिक शरण प्रभ दयाल अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव पाप पाप बिन से किन भीतर तय कृपाल गुसाई सास सास पार गम आरादी अपने सतगुर के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगह शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे।

कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो फल होस, तिस गुर को हो सब बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम दियाई, ऐसा गुर पाये वडवागी, जिस मिलते राम लिवलागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल गटा के अंतर जामी, आठ पैर अपनी लिवलाए, जन नानक।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाय, कहो नानक वड पागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सच साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाई है।

हर नाम जपते किल विक्षम लाते, संत साजन सुत भय सुवेले, गुरु पूरे प्रभ सो ले मेले।

गुर पूरा पाये वडबागी, दर्शन को जाये कुर्बान। रहाओ चिलगुत में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आ प्रगास, चरण कमल मन माय निवास। जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार। गुण गावे नित नित नित नवे, लक्ष चौरासी जोन न भवे। इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे। जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, ओट मदे को विरला दास। जल तल मैयल पेछे परपूर, नानक उदरस किस जन की दूर। प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने। जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पल कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराग प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए समाया। आवागौण तुद आप रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर पेते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तो कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, हो मैं विचों सबक जलाए।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राखिया, नानक कहे महा

रेचक पूरक कुंभ करे। बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे। अंधा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे। नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर परम पुले। खट कर्म नाम निरंजन।

याद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनों व्यापे शोक संता।

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो मैं विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

पार हर जस कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि में पूजा हर रस चाख्या तो मन पीजा प्रणवत नानक।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकनहार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे

हर मंदिर में नाम निदान है। नाबू जय मुक्त गवार, गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया उधार। गुर की बाणी गुर ते जाती, जो सुदरते रंग लाए। पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए। हर मंदिर

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई, पारस पोते है कंचन भया, कीमत कही ना जाए। हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, तय पाए जागे से जन जागरण करें, होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख शैल तुम उपजे, दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने,

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मीठ मो

ता गांडा जब कब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करी जा चरण कमल निम्ख हृदय धारे गोविंद जपते सब

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जब जीवन पाया हृदय अलख बिडानी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

हृदय अंतर कर तलकाती ठग दुष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिरामं क्रूर दुष्ट रता निस्वादं रहाओ।

तिलपूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पगनाचस चित्त अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रेलं पट कृष्ण अवाथं जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिन सत न लगे बार, हो रे समगात है।

बात है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

का विनोद सुख कतंच भाप मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहंत।

तत आसन नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरांतं

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निर्तमोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बेह कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

अंतरे महंत अदा तोयंतरंगं दुखंत जय चिंता जन्मं तमरं अनित साधनं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने हृद बसंत बह भीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत स्रोता सुख।

शुद्ध दया निधान निगम नच गुण गय नाम कीर्तने नच राग रतन कंठन नह चंचल चतुर चातुर भाग।

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप कुल हरे तत्र गते संसारिणान सोग हर्षं।

ਸਿਆਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ।

परम बादन अवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जन मने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

तदेन चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए गुरु मंत्रणे।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती, दैदित चमके भी जल मुख को जो हती।

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश नरक परे।

गुर क्या करे जो सिखा में चूक अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाए फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पटम कर ना पूजा।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरै बित कबीर सेवा को दोए भले।

0: कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।
1: कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे।

ताबत रखें ता राम भजे नाहे ता विनती बात। कबीर के सो कू किए ना सोए सारे

श्री राम रतन मुख को तेरी पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जाने।

जीवंते पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे अगत।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो कहे खाद तिरम की पाके से की खेले, काठी सरसों तेल कह ना फल कई ना तेल। सूंदत डोल है।

खल डूंगर पड़ो मन अज करी दे कूजड़ा सह को माखी ओम राती वड्डियां सुख उठन पास सिग तिना दा जीरिया दिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया नित्ता आयड़िया।

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया की चलसी थके कवले कले। फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है। फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर गए गए हेरे मुक्ती पासे जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

आमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अग्गे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरयो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुमताज अल्लाह।

دنی نکتے کم نکل فقیران داکڑی سو پائے پور کرم پہلے تہرے پھلڑا

कण तकै तनूर ज्यों बालन हद बलन कैरी थका सिर जुला जेहू तिरी मिलन। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर कैरी क्या फेड़िया अंदर तिरी निहाल। हौ तू देंदी सजना सजन मैं दे नाल नानक अलख न ना

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया वधंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बपुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जे किस पाव।

तो कमस को अखर कहाँ गुण कमस को मणिया मंत्र कमस को वे सोहा करी जित वस आवे संत निहंस को अखर खान गुण जो बा मणिया मंत्र।

पार नहीं तुम भरे, हर अंत नहीं पारावार, कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार, एक दिन क्या बखाने, हाके बल बल बल बल सद बल हार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर, परे ही ते परे अपर अपार पर, आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर, उप तो कर लो एक निमक तो भर, आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट कर छते, जाए नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाने, हाके बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भग दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बतन है हाके बल बल बल बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पूरा तन सुनिए।

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगला होठो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नामिक जगे जानत सुपना। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो मादारो। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो। सूर न वीर न मीर न थानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन एक करत पौध तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा। चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचावर बहुत जौन भम्यो अत भारी। छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मागत शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस

पाक दुधे मन दर्स मग पावत जरो न जात रहो जन धूर लग नींद न सात सबोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु भाती बिचरे अन सास बहु खटुआ भस्म लगाए तीरथ बहु घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाता अनक भात फाटे कर फटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

गुण मर्म चार खट दर्शन ब्रह्मादत समरंत गुणाम गाए गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत

भगत दीन गुण रहे सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आवर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक हथे सहज अम्यो उठो। सज

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

हर हर दर्श समानी, आत्मावंत ज्ञानी, जानी अकलगत गुरु परवानी, जाकी

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाथ तन न थियो अम्यो अंतर्गत पियो रुद बिगास जागयो अलग कल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समा

बो है नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुर सबरे सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी अमे दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे।

की जय को एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोए पुरुष वर साचा जाता एक नाम असल संसार जिन भगत भव

सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया तित नाम लागते तुझसे धयावे जति कपि।

चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगत भाव धारण अमरदास गुरु को पुरिया। नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सके अत जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तें पायो। नाम धुआवे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधियो हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु तुस दियो करकार। सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल भुज

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाय।

हृदय बसो अतु हो सोए रसिन ही जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान।

चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर दुख ने दुख ते नर निधन नौ ते नर शोक नौ हुए ते नर से अंत न ले।

गुर अमर रास निज भगत है, देश दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए कहुं पाछ बिनासे,

वास करे पवन उदंत न धावे। निरंकार के वसे देश हुकुम बोझ विचार पावे। कलमाए रूप करता।

धर्म धनक कर गयो भगत सिंह सर लड़यो धन गोहर अटल मन सबक गुरु ने जाग लियो काम क्रोध लोभ मोह।

अब नाथ अब गत गयायो। इस भेंटे दारिद्र न चमते कल सहारता।

कब काल ठकर हर दासने गुरु रामदास सर अबर भरे। छूटत परवाह अमेव अमरात अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कण कण छकुन हर दास तने गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़।

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

गुरुजन को सौ तरसन मान अभमान निवारे। जिनको गुरु सौ तरसन सबद लग

गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुर्द धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हो चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके दे।

पांव ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकड़ खनिस सूर दिन सैर करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

काठो सीखन सतगुर कियो दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया ते पश प्रेत

मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास पियो सेवन की, बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोर से, बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, तो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो, निस्बासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। मन दास आस जगत गुरु की, पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जते नाम नवनिध आते रतन ऐनित रते सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर हृद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

सुबत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुर ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

कृपा सतयुग जिन धूपल श्री प्रहलाद भगत उदयं हस्त कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

फिर थप्यो हर का नाम अखेन अप्यो अप्यो हर नाम अखेन दे सौ जुग गुरु सेवा कर फलियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ए परतीत, परतीत ही ए आई जिन जन के

का ब्रह्म भरम शुभ छुटका अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग।

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

गुरु सत जियो। गुर के आमाने निज निधाने सच जान मंत्र एह नित बातुर स्वयान। लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों तार धो। होमे का फल काट साध संग रत जियो। देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ। दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार सजनिकार मन।

पाता। गुरमुख संगत सबे बिचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अना

गुर समरथ गए किरिया धो बुद्ध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पारे उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधारण।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वर्ण सुबर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

तेज तुम लोक प्रगा से देखत दर्स भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे। तारे ओ संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़ो।

आगे बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सो।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

ज्ञान प्रगत को जयारो, दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुण लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यो अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निस बासुर हर चरण निवास। सांते संगत सग

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु कीनी भगत प्रेम निवलाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस।

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा से मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

आए बौरस साल ने सवार दी खट रस मीठे पाए क्यों बाणी भगत सलांदे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै पगती भगत बहु लोच दे।

सतगुर के पाने जो चले सुत पासे हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो।

0: नाम रतन पर गाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्ते फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकते कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कह शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम।

कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसे मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए, नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन न करे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा।

आए बिक का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिक हो मैं गया।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर है नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए, हर गुरमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारन जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है।

आनंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सुजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांति वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श लियो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहि चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जे सो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसै गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमती ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसै सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर के नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चितव दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न होवे ना

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटुंब तरे परिवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन से लुजै जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार ओना अंतर ज्ञान न ध्यान है हरसो प्रीत न प्यार मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार नानक गुरमुख सोहने सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुकुम फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ से दालियां सतियां जे गुर चरनी लगन अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुरु सच ना पाईए मन मुख भूले जाए बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुके सहज उपजे चुके कूप पुकार नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उरदार बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरो खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए इंद वरते दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पैका सह सिगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास
ਨਾਨਕ ਕਟ ਕਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ, ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੈ ਪੱਲੀ ਬਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪ ਛੋਡੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਪਿਆਇਆ, ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਪੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਪੁੱਲਿਆਂ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ।

वडपागियां सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुरु पुरख है जिन सत जाता सोए जित मिले तिप उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुरु सतपुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुरु निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुरु सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुरु निरंकार है जिस अंत ना पारावार वाह वाह सतगुरु है जे सच दृढ़ाए सोए नानक सतगुरु वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रव सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद अंदर नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाया बहुना मन तन पंग मुंह प्रिया सो ने क्यों सज्जन मिले प्यारिया हौ तू दे दी तिन सज्जन सच सवारिया सतगुर मेंदा मित है जे मिले ता इहो मनवारिया देंदा मुंह पिर दस हर सज्जन सृजन हारिया नानक हौ फिर पाली अपना सतगुर नाल दिखा लिया हौ खड़ी निहाली पंग मत मुंह सज्जन आवे को आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे हों जियो करी तिस विटो चोखनी है जो मैं प्री दिखावे नानक हर होई दयाल ता गुर पूरा मिलावे अंतर जोर हों मैं तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फुरमाया मन न सकी दुत्तर तरिया न जाए नजर करे जिस अपनी सोच ले सतगुर भाए सतगुर का दर्शन सफल है।

फिर बाहरे जा सो देखन अपना नानक जीवन भी हरे। जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया। गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाईए, अंदर रहे आनंद नानक सह समाईए। सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाईए, कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाईए। जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन प्री विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया। जिनको प्रेम प्यार तो आप पहलाया, कर्म कर नानक लिहो मिलाए। मैं जाचक दीजे नाम हर, गुरमुख हसे गुरमुख रोवे। जे गुरमुख करे साई भगत होवे, गुरमुख होवे सो करे विचार। गुरमुख नानक पावे पार, जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार। तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार, तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे। जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े। जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार। नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार, सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार। मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए। दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छड़ाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मों सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए। नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लय मिलाए। मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए। वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए। अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए। गुरुमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखे सब आए। मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए। हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए। नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल। जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हो मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए। गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए। मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार। दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए खुआर। सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए। रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए। सब किस किससे होया जो तिसे धीर जाए, सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए। गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसे मन आए। हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुर दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए। अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए। अंदिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण ना चुकई हो मैं कर्म कमाए। गुर शरणाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याईदा सतसंगत सतगुर भाए। सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मिलाए। यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए। गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंगाए, गुर सिखा की हर तूड़ दे।

गत पाए। सुरमस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए। जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए। गुर सिखा नु सावास है हर सुखा मेल मिलाए। गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया। हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया। गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया। सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया। जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। मन अंतर हौ मैं रोग परम पूले हौ मैं साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात। हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई। सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल बोले।

गुर कै शब्द अराधी है नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू यह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिन की तो सो विसरे थोरठ थोरस पीजी है कबू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाई है दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सुला गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सुचंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नगर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन कुमन क्रिया।

مٹیو نہ جم کو تراس، کہو نالک ہر پدما۔

जगत पिखारी फिर तू है सबको दाता राम।

तिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो। तम संसार चरण

दुतिया माल कौ सका लापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरानद गाए।

हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे

साच नाई पाखिया भाउ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया सुमाई।

सुनिए शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए अठ सठ का इशनान सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भगत।

छुताई, कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह कर्म विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा

एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती।

जा करता सिर ठीक ओ साची, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना नानक आख।

आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानी है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार।

अमोल तुल अमोल परवान, अमोल बख्शीश अमोल निशान, अमोल कर्म अमोल फरमान, अमूलो मुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिब लाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वखियान, आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, केते आख है आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकहै केई के, जेवड़ पावै।

देवतियां दर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूर।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिमें चिलावै जिव होवै फुर

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एकोवेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी।

जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का अख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध

पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब सुमहले

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक।

रात खसम बसार हैं ते कमजात, नानक नावे बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करहूं गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सर।

सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मन चितम है उद्दम जा

सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन जगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्या

है तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जा लोई आसा महला चौथा तू

प्राप्त मानुख जे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप

ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन।

पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाही, कर साधु अंजुली पुन बड़ाही, कर दंडौत पुन बड़ाही रहाउ। साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही, जो जो चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम।

करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगे आईया सत परमल तनवा।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्लां सब कूड़ियां तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह घस मस कर।

जित खादै तन पीड़िऐ मन मह चलहै वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद।

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जां पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु था।

हारिय डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती झूर जे लोड़ है वर कामणी नह मिलिय फिर कूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाइय फिर दूर मेरे ठाकुर पूरा तख्त अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाइय साच अतोल रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास। श्री राग महला पहला आव भैणी गल मिले अंक सहेलड़िया मिलकै करह कहानियां समरा।

मोर एक शब्द बिचारिय जां तू तां क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किनी।

आखण आखी है, आखण तोट ना होए, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है, मन बसे सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात को, सिफती सिफत समाय। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखियां हर जप एकै पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले है सुख होए। निज कार महल पछाणिऐ नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिऐ अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए हौसा।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे तूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐसै धंध पटाई है सच लिखत परवान।

आपे रसिया आप रास आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

दुष्ट किरखा करे हिन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार दस अठार में अपरंपरो चीन कह नानक इव एक तार गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर तरती।

क्या होए आपे सच भावे तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेहि धात तेहा तिन नाओ फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज।

अस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे। हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद्ध फिरै ओना तिल ना तमाए। जो प्रभ भावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै

मावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

आई, पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

हे निर्मले हौ सद बलिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगै ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले इत सच्चै दरबार कोई अमृत पीवे है सदा सदा सच्चै नाम प्यार भाई रे गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे, एहो मन धावत तां रहै जां आपे नदर करे। भाई रे गुरमुख हर नाम त्याए, नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ, बहु जूनी पौंदा फिरै ज्यों सुनै घर काउ। गुरमती घट चानना।

पार बिख्या अंदर पच मोए ना उरवार ना पार माया मोहि वसारिया जगत पिता प्रतपाल बाजो गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल।

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहु जिदू पाइए सच सोए असुर संगारै सुख वसै जो तिस भावै सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मन मुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का

मनमुख कर्म कमावणे ज्यो दुहागण तन शिंगार चीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरै भाग सतगुर मिले जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए गुर कै भाणै जो चलै दुख ना पावै कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजी पावै कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोई नानक गुरमुख नाम त्याई है।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाईए, जे लोचै सब कोय रहाउ, लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाई।

ना पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते हुए सखाई। अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए।

दे, गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे, जन्म पदार्थ खोए रहाव, जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया, बिन चाखे भरम भुलाए, अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए, पीवत हूं परवान भया।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

वाय मनमुख कर्म कमावणी दरगाह मिले सजाए मन रे दूजा भाव चुकाए अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए रहाऊ सच बाणी सच शब्द है जां

जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहे आ भरपूर रहाउ सच सलाहन से सच्चे सच्चा नाम आधार सच्ची कार कमावणी सच्चे नाल प्यार सच्चा साहु वर्तदा कोई ना मेटन हार मनमुख महल ना पाएनी कूड़ मुठे कूड़े आर हौ मैं करता जग मोआ गुरबिन घोर अंधार।

सतगुरु सेव मन निर्मला हौ मैं तज वेकार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख उजले तित साचै दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हौ सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाय।

रहाव मन किया इच्छा पूरियां, शब्द रहया भरपूर, भय पाए भगत करहै दिन राती, हर जीव वेखै सदा हदूर, सच्चा शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर, जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए, सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय, सुनिए घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाय, मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय, सब किसी आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय, गुर कै शब्द पछाणिए दुख हम मैं विचों गवाय, सतगुर सेवन अपना हों तिनकै नागो पाए, नानक दर सच्चै सच्यार है हों तिन बलिहारै जाऊं, तेरी राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर पेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उड़ता।

शब्द सुवारण हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावै सब डुमणी दूजै पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवै जाय नदर करे।

मामंदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तैं दे हम मैं।

आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितों न भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाई रहाव सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवै रस गुण गाय गुरमुख एहो रंग पाई है जिसनो कृपा करे रजाय संसार एहो संसार है सुत्या रहन विहाय एक अपने भाणे कड लयन आपे लयन मलाय आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाय आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाई एक आपे आप खुआयन दूजे

पात्र जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर कह पाणे चल निज कर वसह अमृत पीवह ता सुख लह महल रहाउ अवगुणवंती गुण को नहीं बहन ना मिले हदूर मनमुख शब्द ना जानी अवगण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन भेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगण रंगियोन शब्दे लयन मलाय सच्चा रंग न उतरै जो सच रते लिवलाय चारी कुंडा भव थके मनमुख बूझ न पाय जिस सतगुर मेले सो मिलै सच्चा शब्द समाय मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटै कोय मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मलावा होय सच खटना सच रास है सच्ची सच्ची सोय सच मिले से ना विछड़ है नानक गुरमुख होय श्री राग महला तीजा आपे कारण करता करे श्रेष्ठ देखै आप उपाय सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाय आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाय गुरमति सद मन वसिया सच रहे लिवलाय मन मेरे गुर की मन लहर जाय मन तन शीतल सब थी है नाम वसै मन आय रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणिया जाय आपे नदर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार गुरमति सच सलाहना जिस दा अंत ना पारावार घट घट

होना पाईऐ गुर विचार रहाउ मनमुख कंत ना पछाणे तिन क्यों रहण विहाय गर्भ अटियां तृष्णा जलह दुख पावह दूजै पाय शब्द रतियां सुहागणी तिन विचों हों मैं जाय सदा पिर रावह अपना तिना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम ना पाया जाय अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाय आवहो मिलहो सहेली हो मैं पिर देहो मलाय पूरे भाग सत गुर मिले पिर पाया सच समाय से सहिया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घरवर पाया अपना हम मैं दूर करे नानक शोभा वंतियां सुहागणी अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावह अपना।

भाई अन दिन रावे फिर अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वार पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सालाह ने अपना तिनकै हों सद बल।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाओ मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हउ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमति सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहार जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थाऊ मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाऊ नानक नाम ना विसरे सच्चे माहे समाऊ श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्द शरनागती कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवर ना कोए हम गुर सरनाई तह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

थी मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास धन वड भागी वड भागिया जो आए मिले गुर पास जिन्ना सतगुर पुरख न भेटे हो से भागहीन वस काल ओए फिर जोन पुआई है विच विस्ता कर विकराल ऊना पास दुआस न पिटी है जिने अंतर क्रोध चंडाल सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी नावह आए हुन जन्म जन्म की महल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाई जन नानक उत्तम पद पाया।

पाई। गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाई। हीरे हीर मिल भेदया रंग चलूले नाई। मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की। गुर तुस मलावै सो होए रहाओ मन रंगो वड भागी हो। गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यो। हौ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई। लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै। कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है। विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ। मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बहुत हर नाव है। इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कै पाणे जो चलै। विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका। जिन्ना सतगुर लए मलाए श्री राग महला चौथा। हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं। जिन्नी मेरा प्यारा रावया

मलाई हो सतगुरु बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दी याद खाई रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थी भाग हीन बहर होए जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुरु आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिले रस खाई जाए पुछो हो सोहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार रहाऊ गुरमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आई सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाई से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए ओए सतगुर आगे ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उभरे अलिपत रहे सरनाए उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास श्री राग महला पंजवा कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार बहुत करह परमाईसी वरत है हुए अपार करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए रहाव कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत जिसनो तू पतियां एंदा सो सन तुझै अनित अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत इन प्रभ आप भुलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोई, नानक रत्ता रंग हर, सब जग मह चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहिया, विच सहसे परिया, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधाते, दुख सहसा मिट गया रहाव, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग हुई, वरतै अफरिया, सब को वस गत कर लयोन, बिन नावे खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिया, बिन बुझे मुगद अजान, सो प्रभ चित ना आयु, छूटेगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कफकड़ी, सब मुकदी चली रैन, रहाऊ कुदम करे पस पंखी।

साचे देव हो अपना नाम। श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी इस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सहाई सदा संग आगे ले छाए रहाओ दुनिया किया वडियाईया कवने आवह काम माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हिरदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देवै प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमै ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप। श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसर, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको, थान थनंतर आप जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होय, गुरपूरे पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाउ जन्म मरण का पाउ गया पाउ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई, किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए, जिन मन वसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान, जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आय, अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय, मेरे मन गुर शब्दी सुख होय, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाव, मन कियां इच्छा पूरियां पाया नाम निदान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान, पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाव, कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव, मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाऊ, निमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो, मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै,
सब मह रहे आसमाय, दीन दर्द दुख भंजना, सेवक कै सत पाए, अचरज रूप निरंजनो, गुर मेलाया माय, भाई रे मीत करहो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत त्रिग, सुखी ना दिसै कोई रहाउ, दाना दाता सीलवंत, निर्मल रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार, बालक बिरद ना जानिए, निश्चल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाई है, निधारा आधार, जिस पेखत किल विखहि रह, मन तन होवै शांत, एक मन एक त्याई है, मन की लाहे प्रांत, गुण निधान नवतन सदा, पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराधी है, दिन विसरहो नहीं रात, जिनको पूर्व लिखिया, तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो, सगल वारी है एह जिंद, देखै सुनै हदूर सद, कट कट ब्रह्म रविंद, किरत कणानु पालदा, प्रभ नानक सद बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा, मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार, सर्ब कला कर थापिया, अंतर ज्योति अपार, सदा सदा प्रभ सिमरी है, अंतर रख उर तार, मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोए रहाउ, रतन पदार्थ मानका, सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंधपा, कूड़े सबे साक, गिनकी तात सह न जानी, मनमुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया, तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया, अंतर हों मैं कूर, भगती नाम विहूनिया, आवह वंजह पूर, राख लेहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार, महा बिकट जम भया, नानक नाम ना विसरऊं, कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन, मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक, बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ, नाम निधान त्याई है, मस्तक होवै भाग, कार्य सब सुवारी है, गुर की चरणी लाग, हों मैं रोग भ्रम कटी है, ना आवै ना जाग, कर संगत तू साधकी, अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि, साचा इहो सुआउ, एथै मिलह वडाइयां, दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ, सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा, अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ सरनागती, सर्ब कटा के नाथ, श्री राग महला पंजवा, सरन पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल, सतगुर कै अपदेसिय, बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम, अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो वसार रहाउ, गुण गोविंद नित गावी है, अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए, कर डिठे बिस्थार, सहजे सिफती रत्या, भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा, पाईए साधु तूर।

आस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाए, मेरा मन तन भुख आते अगली, कोई आन मलावे माई, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस पंडार, सदा सदा सलाही है अंत न पारावार, पर्वतगार सलाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आरा दी है एहा मत वसेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख, श्री राग महला पंजवां संत जन हो।

गुर अमृत नाम पी आलिया, जन्म मरण का पाथ गुर परमेश्वर सेवया, पै भंजन दुख लाथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेवया अपना, जम दूत ना लागे डंड, गुर नाल तुल ना लगई, खोज दिथा ब्रह्मांड, नाम निदान सतगुर दिया, सुख नानक मन मेहमंड। श्री राग महला पंजवा, मिठा करके खाया, कौड़ा उपजया साद, पाई मीत सुरद किए, बिख्या रचया बाद, जांदे बिलमना हुई, विण नावै विस्माद, मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो दिसै सो विनसना, मन की मत त्याग रहाओ, ज्यों कूकर हर काया, तावै दह दिस जाय, लोभी जंत ना जाने, पाख अपाख सब खाय, काम क्रोध मद व्यापिया, फिर जोनी पाय, माया जाल पसारिया, पीतर चोग बनाय, तृष्णा पंखी फासिया।

हर जानो हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना पाओ।

देख दर्शन मन साधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़।

सवारिया हर सिमर होए उधार जापमान नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाव काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस देह प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहु कीर्त करला कथन

अपार गुर उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सत गुर पास पूर्व लिखे।

कीमत किने ना पाईया सब सुन सुने आखे सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाऊ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी

ਕਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਤ ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣ।

सच रास साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास पात स्यों लेखा निबड़ै राम नाम परगास ऊंचा ऊंचो आखिए

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोरे काल अपार, सच रते से उबरे दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार न दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई सत।

तन वांडी चूरे ज्यों जल थोड़ै मछली करन पलाव करे फिर भावै सुख पाई है जाया पे नदर करे।

रहाउ बिन रासी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझे अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कार्ज सार बन जारिया स्यो बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

ये फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं, नाम हो पूली जे फिरा फिर आऊं जाऊं, पुछ हो जाए पंधाऊआ चले चाकर होए, राजन जान है अपना दर कर ठाक ना होए, नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई, श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए, निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै, सो जाने अब पीर सहज ते सुख अगलो ना लागे जम तीर, पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए, रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार, राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार, हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाय कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मलाए आप पछाण घर वसै हम मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रहे सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीवं।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे न दूजी वार शब्द ही ते पाइये हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मै वारो वार सब सलाह है आप को बड़ो बडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नानक शब्द पछ

अतुल ना तुलिए कथन ना पाया जाए व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए कार कमाव है सच की लाहा मिलर जाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाई गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुरठा की सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है।

कै बिन जल मरनत ने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के कर्म मिले सो पाई है।

अवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईऐ सच मिले सुख होय सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोय ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होय निर्मल नाम ना विसरै।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे सेती रतिया सच्चो पल्ले पाए पुल्लने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुरबिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मन मुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लबई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहण ना जाए जित तन नाम ना पावई तित तन हो मैं वाद गुरबिन ज्ञान ना पाई है।

तू ज्यों भावै त्यों राख। गुरमत साचा मन वसै नाम भलो पत साख। हौ मैं रोग गवाई है शब्द सच्चै सच पाख। आकाशी पाताल तू त्रे भवन रहया समाय। आपे भगती पाओ तू आपे मिलह मिलाय। नानक नाम ना विसरै ज्यों भावै तिवें रजाय। श्री राग महला पहला राम नाम मन बेदया। अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजै। प्रभ रातो सुख सार ज्यों भावै त्यों राख तू। मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाय। जिन तन मन साज सिंगारिया इस सेती लिवलाय रहाओ। तन बै संतर होमी है एक रत्ती तोल कटाय। तन मन समधा जे करी अन दिन अग्न जलाय। हर नामै तुल ना पुजई जे लख कोटि कर्म कमाय। अर्ध शरीर कटाई है सिर करवत तराय। तन है मन चल गाली है पी मन ते रोग ना जाय। हर नामै तुल ना पुजई सब डिठी ठोक बजाय। कंचन के कोट दत करी बहु है वर गैवर दान। पूम दान गौआं कणी पीय।

साजी है, एक चानन तेहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, तुर बख्शना मेटै कोई, साध मिलै साधु जने, संतोख वसै गुर पाई, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहि समाए, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैंदा जाए, कट कट वाजै किंगरी, अन दिन शब्द सुपाई, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरे, छूटै शब्द कमाए, श्री राग महला पहला, चित्ते दिसह धौल हर, बग्गे बंक द्वार, कर मन खुशी उसारिया, दूजै हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन, तै ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो, गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ, राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जानै आपणी धियां पूत संजोग नारी देख भगासियै नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चलै वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुचियै धर्म है वस्त सुथाई मनमुख होमै करमुसी गुरमुख पल्लै पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का इहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखियै जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्स ना होय ज्यों सुपने निस भुलियै जब लग निंदरा होय इउं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारियै सुपना इहो जग लोय अगन मरै जल पाईऐ जो बारक दूधै माय बिन जल कमल सोना थीऐ बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास में।

आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दोही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिये अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हौ मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना।

काम तिसनो आखिए जिस शेष ना होवी लेख असमान तरती चलसी मो काम ओही एक दिन रव चल।

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होए।

जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ते लिवलाए मन रे गुरमुख नाम त्याए तुर पूर्व करता लिखिया इन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत ना आवे नाम ना लागू पाओ सुपने सुख ना पावे दुख मह सवै समाए जे हर हर की कै बहुत लोची है कीर्तना मेटिया जाए हर का भाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावंदे बिख होमै तज बेकार मन हठ कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए हर

गुर कै पाणै जे चलहै ता अन दिन राचहै हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडहै चहो दिस जाहे, जेता उडहै दुख घणे नित दाजहै तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन

गुर भगत है विरला पाई कोई रहाउ सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाई सदा फिर निह चल पाई है ना ओ मरे ना जाए शब्द मिली ना विछुड़ै फिर कै अंक समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझई भेखी परम पलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाए बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नु गई खाए शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिरे समाद न लगे सुपाए तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुगदा माया जाए माया किसनु आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बाध है हम कर्म कमाए बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाए बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए शब्दे हम मैं मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सालाही है कर्म परापत होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए।

गुर पूरा साला ही है, सहज मिले प्रभ सोई रहाऊ। परम गया पौ भागिया, हर चरणी चित लाई। गुरमुख शब्द कमाई है, हर वसै मन आई। कर महल सच समाई है।

भाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खत दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाई

पंडित पर पर वाद विखाण है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाय सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने विटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुथा जाय। चौथे पद मह सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत।

कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड्डे भाग नाउ पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया

चलता देख के भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवां। जा को मुश्किल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना। साक पे भज खले

करी ना किस होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ना निश्चल होवे राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोग भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

घर पंजवा जानो नहीं भावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता।

सिरे सिर तम दिलाया वेख की तायापना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानियां खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रासे आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करहे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम बखानी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया तब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियों लगे ना तत्ती वाउ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीव नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जे वड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थामु मिठड़ा पैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुईया कागल चेतना जान दा हर इक तै कार लायोन ज्यो भावे तिवें नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा को गगराउ जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थे नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुर सिखा लहंदा पाल कै

दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुनहो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठिया, तुस आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रियान दा, सब सुखाली बुठिया, एहो हुआ हले मीराज जियो।

आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बूढ़ी दूजै हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर केत दूजै पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मर हो गे झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजै पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा सर हंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिनै बन जारिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जां जम पकड़ चलाया सब किछे अपना कर कर राखिया खिनमह भया पराया बुद्ध वसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताई कहो नानक प्राणी तीजै पहरे प्रभ चित हो लिवलाई चौथे पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा बिरध भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बणजारिया मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुणी अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुखे आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़क आया तिन सहया बणजारिया मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बणजारिया मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे।

ना सेविया सिर ठाडी जम जंदारा कर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा बिक संचय अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जारिया मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चित ना आवै साध संगत स्यो संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजनहार वसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिक संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोई गुरमुख नाम संभाल तू बन जारिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते हुए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानन होए कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बन जारिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देमनी बन जारिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेवया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवै सो खात कहो नानक भगत सोहै दरबारी मनमुख सदा पवांत श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद अयाणी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़े कम सिखे सहोरड़े कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहियां विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद अयाणी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हऊ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़ै हर जप सुहेली विच सहुरड़ै खरी सुहंदी सहुरड़ै विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो नान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर है मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कभी बिनसै जावे
नित देवे चढ़े सो आया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबुला, फिर मिल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवा संत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जियो मित्रा, गोबिंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा, हर निबह तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई ना जाय। मन चिंदे से फल पावह, चरण कमल चित लाए। जल थर पूर रहया बनवारी, घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग भ्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा, हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी ओ मित्रा, देख सागर संसारी। चरण कमल कर बोहित करते, सहसा दुख न व्यापै। गुरपूरा भेटै वड भागी, आठ पहर प्रभ जापै। आदि जुगादी सेवक स्वामी, भगता नाम आधारी। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हार झूठ पसारी। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर दर निश्चल मल्ली। हर दर सेवे अलख अपेवे, निश्चल आसन पाया। तह जन्म ना मरन ना आवन जाना, संसार दुख मटाया। चित्रगुप्त का कागद फारिया, जमदूता कछु ना चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लगे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संतां संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुख गामी, इच्छ सगली पुनिया। पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले श्री वछुनिया। अंतर बाहर सरबत रविया, मन उपजिया विश्वासो। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संतां संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मेल जीवे मीना। हर पी आगाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन बुठे। श्री तर पाए मंगल गाए, इच पुन्नी सतगुर तुठे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्बस ठाकुर दीना। नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के संत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दखना हठ मजाहु महापिरी, पसे क्यों दीदार। संत सरनाई

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोहया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाहे सेना।

मरी। सतगुरु दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए, हर गुर सरनाई पाईऐ बनजारिया। मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ, संत जना विन पाईया। हर किने न पाया नाउ, विच हौ मैं कर्म कमावंदे। ज्यों वेसवा पुत निनाउ, पिता जात ता होई है। गुर तुठा करे पसाउ, वड भागी गुर पाया। हर एलस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया। हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ। गुर पूरे नाम दरडाया, हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हौं बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ, हर आपे आप उपाएंदा। हर आपे देवैली, हर आपे परम पलाएंदा। हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन परगास है। से विरले के ई के, हौ बलिहारी तिनको। जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल परगासिया। मन हर हर बुठड़ाए, मन हर हर जपन करे। हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू, सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नाम मैं ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहू है, हर नामी ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, जिनको पूर्व लिखिया। से आए मिले गुर पास, सेवक पाए वणजारिया। मित्रा गुर हर हर नाम परगास, तन तन वणजवा पारिया। जिन वखर लद्याड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले। ते आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया। जिन्ना आप तुठा गुण तास, हर त्याहु सास ग्रास। मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा, हर नाम जिन्ना

तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वडियाई हर तुदहो बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्यावो संत जन हो जो लय छुड़ाई। श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इका छाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे सियोने हो किसे आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कह पाछै जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इकना नू हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार सियों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जिहे तिर देखा तेहे तिर मौजूद। महला तीजा। गुर सभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रह हदूर। पौड़ी। सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हों कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। श्लोक महला तीजा। कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट सने हो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है कर्मी पल्ले पाए। पौड़ी। हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो कीचै।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख करी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुतार होवै अंदर धोखा नींद ना सोवै जे तन खसमै चलै रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम मिहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजा लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिस्ता अंदर कीट से पै पचह वारो वार।

अचेता हाथ तड़ाया। सलोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखान है, माया मोह सवाय। दूजे पाए हर नाम वसारिया, मन मूर्ख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता, तिस कबहू ना चेतै। जो देंदा रिजक संभाए, जम का पाहा गलहू ना कटिया। फिर आवे जाए, मनमुख किशु ना सूजै अंधले। पूर्व लिखिया कमाए, पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता। नाम वसै मन आए, सुख मान है सुख पैनना। सुखे सुख वेहाय, नानक सो नाओ मनो ना विसारी है। जित दर सच्चै सोभा पाए, महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम परगास। सचो सच कमावना, वडियाई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास। सच्चा शब्द सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संयम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाई, मनमुख मोहे विनाश। ज्यो भावे त्यो राख तू, नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा, तू सब सदा, तू सब नारास। सब तुदे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू देहे, तिस सब किश मिले।

प्रतीत होए ता घर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर कै भाए सुभाए गुर विन सहज ना आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पल हर नाम मन वसै सब अठ सठ तीरथ नहाए सच्चे मैल ना लगई मल लागै दूजै पाए धोती मूल ना उतरै जे अठ सठ तीरथ नहाए मनमुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला पूजन तां थीऐ जां सतगुर माहि समाए महला तीजा मनमुख लोक समझाइऐ कदहों समझाया जाए मनमुख रलाया नार लै पयै किरत फराए लिव धात दुए रहा है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मन समाए मन जो इच्छे सो लहै सच्चै शब्द सुभाए अमृत नाम सद पुंचीऐ गुरमुख कार कमाए विन मनै जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मनमुखी मन हठ हारिया कूड़ पसत कमाए गुर प्रसादी मन जिणै हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावै मनमुख आवै जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन भाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवै मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यो सूरज रैण कराखी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी सलोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लिख लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवियो तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस भावै सो करे कहना किछु ना जाए महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कमाए दूजै भाए अज्ञानी पूज दे दरगाह मिलै सजाए आत्म देव पूजीऐ बिन सतगुर बूझ ना पाए जप तप संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए नानक सेवा सुरत कमावणी जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपुह मन मेरे जित सदा सुख होवै दिन राती हर हर नाम जपुह मन मेरे जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती हर हर नाम जपुह मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती हर हर नाम जपुह मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचै हर चित मुख नाम जपाती।

कर्म प्राप्त होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत जान है, गुर प्रसादी आप पछाण, धावत राखै इकत घर आण, जीवत मरै हर नाम बखाण, ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मूख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

तू मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराओ हसै ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चौ मरना रमैया जपोह प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरना हुक्म पछाण तां खसमै मिलना रहाउ दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी जरा मरण भउ विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कहे मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग

नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव है गा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्याप रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संताप जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया पुछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख है भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहू रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

मित्र सखा सुप्रीतम पाई, मैं दस्ते हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलहु जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम ते आइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरु

प्रीतम दस्ते तिसकै हों वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुर बिटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हों सतगुर बिटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटों बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महल्ले चौथे के माज महल्ला पंजवां चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां तू

तुद मन पानी तिनकै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला।

आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरे। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है

पनीता, सगल उदारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जाको खोज है सर्ब उपाए, वडभागी दर्शन को विरला पाए, ऊच अपार अगोचर थाना, ओह महल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय बसेरा, गुरबंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोको साधु दिया, किल बिक काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बना

पोत पोत सेवक संग राता, प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता, पाणी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही।

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोहु जो मन तन तुद आराधे जीयो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभला दे जीयो सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीयो इनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगा दे जीयो माज महला पंजवां तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीयो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद।

ते नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल

सतगुर का दर्शन पाए जियो, सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम बखाना, जल थल नीर भरे सरस पर।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित